जपौ हरिलाई कृष्ण जपौ हरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिलाई, एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ भरिलाई।

नमस्कार जिलु कोले बहनी म पदम प्रसाद चौरागाई वृद्धि सिद्धि गुरु गणपते साष्टाङ्ग यही गर्दछु।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

खाएनी सब खाएनी रक्सी भने रक्सी मिठा के रक्सी सबसे होटल बाल्मी पुगी सुरु सुरुमा जार सिक

0: नमस्कार
1: रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम बैठने थोपलो सात मेगाहर्ट्ज मदे प्रसाद सापकोट आज विक्रम सम्मत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 30 तारीख आश्विन 14 गते बुधवार चौथी तिथि
0: अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी

राजा नौश का इशारे दौलत से परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समान कर्ण समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सदबा तकै काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढाले पनि कृति उज्ज्वल होस सुत सहित।

0: धोका होला है जीवन को अंतिम छीन में धोका होला है। भाषा का डोला में चढ़ेर सेतो पछौरा ओढ़े जंती जान खुरुरु आगो लाग्छ हुरुरु यो अमूल्य जीवन गईगो बितेर कृष्ण कृष्ण बनाउला संसार पार तरौला भन्दा भन्दा यो अमूल्य जीवन बिगैगो बितेर यो अमूल्य जीवन गईगो बितेर। हस्त धन्यवाद।
1: परिचित अपरिचित मित्रजनहरूमा म शिवको नमस्कार। नेपाल र